0: Laika Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट पे गया.
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियां हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
0: डाउनलोड द Laika Radio मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज. The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m. Laika Radio.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Lester Miller is back.
3: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
2: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
3: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
3: Arts Council England.
4: आपके सामने एक रेड बटन है,
5: दबा दिया।
4: नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4।
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
6: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
10: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises.
10: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167225. We're Atoll Protected.
0: Lyca Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163325100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा
13: ऑर्डिनरी। Everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
14: Four beers, please, garçon!
13: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Cool music for a super hot summertime on the Lyca Radio.

0: बहुत अच्छा लगता है भाई, संगीत किसको अच्छा नहीं लगता। गीत बहुत प्यारे होते हैं, बड़े न्यारे होते हैं, हमारे और तुम्हारे होते हैं जीवन का अंश। वल्ल, दो गीत बैक टू बैक हमने परोस दिए आपको। ये गीत जो अभी आप सुन रहे हैं अजनबी फिल्म से है, लता जी और किशोर दा ने स्वर दिया। और जो पहला गीत था भाई प्रोग्राम का, मेरे महबूब तुझे सलाम, दैट वाज टेकन फ्रॉम द बगावत फिल्म। गाने वाली आवाजें रफी साहब और आशा जी की थी। भाई अब आपको हम पाउंड का रेट बताने वाले हैं, याद दिला दूं आपको, दिस इज मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं कि भाई अपने कोई परिवार को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अगर आप पैसे भिजवाना चाह रहे हैं भारत में, तो आज का रेट नोट कीजिए। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.75 रुपीज, 127 रुपए और 75 पैसे। और दैट यू कैन सेंड बाय विजिटिंग द ब्रांच और ऑनलाइन यू कैन सेंड और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट State Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फैंटास्टिक भाई, जो वर्ल्ड कप है फीफा का, महाकुंभ फुटबॉल का, वो चल रहा है और अब वो अपने, यूं समझिए कि अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। उसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले हो चुके हैं, सेमीफाइनल के लिए पहला मैच जो है वो कल खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि आज का दिन फीफा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बहनों भाइयों, क्योंकि सुना है कि 1930 में पहला वर्ल्ड कप आज ही के दिन भाई उद्घाटित हुआ था, उसका उद्घाटन, उसकी ओपनिंग हुई थी, खेला गया था। तो साहब आज तो खास दिन है फीफा के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में 19 जुलाई को होगा फाइनल मुकाबला और उससे पहले तीसरे स्थान के लिए एक मुकाबला होगा और भाई सेमीफाइनल के जो है वो दो मुकाबले खेले जाएंगे। तो फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है देखते हैं, और एक एक मैच का भाई स्कोर और भाई रिजल्ट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बट डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन Leica।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
3: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Wally Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था.
2: The madness is back. Dhamal 4.
3: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
2: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar. Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
4: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ Season 15, hosted by action maestro Rohit Shetty.
6: Welcome to Darga Capital, Cape Town.
2: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush. Starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
7: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
8: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के विशेष समाचार सुनिए। शुरुआत करते हैं भाई विंबलडन से। यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का ये अवार्ड जीता। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। सिनर ने लंदन के सेंटर कोर्ट पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। यानिक सिनर का ये लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। सिनर इससे पहले 2025 में विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं। दूसरी ओर चीन की गो हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडे नोविच की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में कनाडाई ब्राजीलियाई जोड़ी ग्रेबियला डब्रोब्स्की और लुइसा स्टेफानी को सीधे सेट्स में 6-3, 7-5 से हराया। खेलों की बात कर रहे हैं तो भाई यत्सिका भाटिया का भी जिक्र करें, जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई और महिला खिलाड़ी नहीं कर पाई थी। पहला शतक

0: क्रिकेट ग्राउंड में भाई टेस्ट मैच में उन्होंने लगाया और ये एक रिकॉर्ड बन गया, जबकि विरोधी यानी मुकाबले में खेल रही दूसरी टीम यानी इंग्लैंड की टीम की खिलाड़ियों ने भी तालियां बजाकर उनका धन्यवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। तो यशिका भाटिया भाई जो है पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में शतक लगाया है, पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। राइट, खेलों की दुनिया से निकलकर अब आते हैं भाई हकीकत की दुनिया में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चातुचक इलाके में स्थित एक बार में संडे और सोमवार की दरमियानी रात बार में भीषण आग लग गई, 27 लोगों की जान ले गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को संडे की रात के बाद आधी रात के बाद आग लगने की इन्फॉर्मेशन मिली। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बार के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए और गिरते हुए भी नजर आ रहे थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि आग लगने के समय में बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार से भी पूछताछ की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोग बाहर निकलने की बजाय इमारत के पीछे की ओर चले गए और टॉयलेट्स में छिप गए। उन्होंने कहा कि अधिकांश शव वहीं से बरामद किए गए हैं। भाई हम जब विंबलडन का जिक्र कर रहे थे ये बताना भूल गए आपको कि विंबलडन में एक खास पर्सनैलिटी पहुंची हुई थी, वहां लोग उन्हें भी देख रहे थे, खेल छोड़ के उन्हें देख रहे थे। कौन थे वो? वैभव सूर्यवंशी। कहते हैं मैं टेनिस का बहुत बड़ा फैन हूं और इसलिए मैं फाइनल देखने आया हूं। भाई वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी थी विंबलडन में फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। अन्य खबरों में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को एक वार्निंग दी है। ईरान ने खाड़ी मुल्कों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में अमेरिका को सहयोग दिया या अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया तो उन्हें निशाना बना जाएगा, उन पर अटैक किए जाएंगे। अमेरिका की ओर से हुए ताजा अटैक्स के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज ये चेतावनी जारी की है। भारत से आने वाली खबरों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को मार्टर्स डे से पहले घर में नजरबंद किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि हमें मार्टर्स डे से एक दिन पहले कई कारणों से नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वियतनाम के फूक वॉक आइलैंड के पास एक स्पीड बोट हादसे के बाद पुलिस ने कैप्टन गुयेन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन पर समुद्री और जल मार्ग यानी पानी के रास्ते की सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन का इल्जाम है और उनके खिलाफ आपराधिक जांच भी शुरू कर दी गई है। वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के अखबार पीपल्स आर्मी न्यूज़पेपर ने कैप्टन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, कंफर्म किया है। वियतनाम इस नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत के बाद बोट का कैप्टन अरेस्ट हुआ है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। IRGC ने क्लेम किया कि संडे और सोमवार की सुबह आज अमेरिकी अटैक्स के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हॉलीवुड से एक खबर आई है। हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सैम नील का आज 78 बरस की उम्र में निधन हो गया है। फिल्म जुरासिक पार्क में निभाए गए किरदार के लिए वो दुनिया भर में मशहूर हुए थे। सैम नील के परिवार ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी मृत्यु, उनका निधन अचानक और अप्रत्याशित रूप से हुआ है। उन्होंने सिडनी में अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली। 78 साल के थे। भारत के आने वाली खबरों में बिहार के पटना की एक अदालत ने आज शिक्षक टीचर फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। फैसल खान के वकील ने बताया है कि कोचिंग संस्थान के 3 और कर्मचारियों को भी एडवांस बेल दे दी गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम को अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जाम माल्या और बागची जी और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। और एक बार फिर बता दें, ईरान ने इल्जाम लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिकी दबाव के कारण ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर ओमान के साथ सहमति तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को मस्कट में हुई बातचीत में केवल हॉर्मुज, विशेष रूप से समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 पर, आर्टिकल 5 पर ध्यान सेंट्रलाइज किया गया। हमें खेद है कि अमेरिका ने ओमान पर डाले जा रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर के कारण मस्कट में कोई प्रगति नहीं हो सकी, बात आगे नहीं बढ़ सकी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: जिन दिनों भाई मेरा नाम जोकर जैसी बड़े बैनर की फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही थी, उन दिनों में जॉनी मेरा नाम फिल्म ने आकर के तहलका मचा दिया था। उसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर माफ कीजिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में देवानंद छा गए थे। इस फिल्म में भाई बहुत अच्छा कथानक था और बहुत अच्छे गाने सुपरहिट।
1: Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates, भाई LemFi वाले जो रेट्स दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 128.08 रुपीज, पाकिस्तानी 373.49, श्रीलंकन 450.13, बांग्लादेशी टकास 165.45 और अफगानी 86.37।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
1: Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold is trading at the rate of 97.84 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
3: Radio. लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डीमॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट 7 PM। टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
4: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
5: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rivco Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry, 16th to the 19th of July. Click rivcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
1: Radio partner Leica Radio.
9: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर
10: दस्तार। एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
9: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
11: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
12: Create terror.
9: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
13: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार ले लड़ूंगा भी। Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi तड़का is total risk, है ना?
14: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char मजेदार flavors.
13: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, लेस्टर में और ऑनलाइन दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कहना चाहता हूं मैं कार्यक्रम में। यहां ब्रिटेन में इस समय घड़ियां समय बता रही हैं 11:04। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। मुझे बहुत सारे लोग भाई बाहर जब मिलते हैं, कई लोग आवाज से ही पहचान लेते हैं, पूछते हैं क्या आप रवि शर्मा हैं? मैं कहता हूं हाँ। कहती है आप वही रवि शर्मा हैं चिंतन वाले? तो जानकर गर्व होता है भाई, लोग चिंतन के श्रोता बहुत हैं। कहते हैं हम चिंतन सुनते हैं। ऐसी ही एक भाई श्रोता हमारी नीलम जी मिली, कहती है कभी मिस नहीं करती हूं मैं चिंतन। तो अब ऐसा कीजिएगा, मुलाकात हो गई है तो मंडे को हमारा चिंतन प्रसारित कीजिएगा। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी ओर से अविनाश वर्मा और रक्षा वर्मा को बहुत बहुत बधाई दी जा रही है, बहुत सारे लोगों की तरफ से भी, उनके रिश्तेदारों की ओर से, जिन्होंने अपने पोत्र का आर्यन वर्मा का जन्मोत्सव मनाया बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा से, निष्ठा से, पूजा पाठ और यज्ञ हवन के द्वारा, और उसके बाद सेलिब्रेशन, केक कटिंग, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग। सो हमारी ओर से भी आर्यन वर्मा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रक्षा जी को और अविनाश वर्मा को भी बहुत बहुत मुबारक हैं। और बहनों भाइयों, अब नीलम जी का आज का चिंतन सुनिए, थॉट फॉर द डे, आज का विचार चिंतन।

आज की चिंतन में हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है कि भाई क्या स्कूल कॉलेज की एजुकेशन बहुत जरूरी है? क्या एजुकेशन जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, जो माहौल में है, जो व्यवहार में है, जो पग पग पर हमें अनुभव मिलते हैं, उनमें तालीम नहीं है क्या? है, बहुत है। बस आंखें कान खुले रखने की जरूरत है और विचार करने को ही चिंतन कहते हैं बहनों भाइयों। सीखने को मिलता है हर कहीं से, उठा लो, जुटा लो, लपेट लो, ज्ञान पग पग पर बिखरा पड़ा है। आज जिस व्यक्ति की चर्चा करवा रही नीलम जी कहती हैं, इलन मस्क का नाम तो सबने सुना है। इलन मस्क भाई कहते हैं कि दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति हैं इस समय। कितना पढ़े होंगे, बोला भाई साइंटिफिक प्रॉपर्टीज उनकी बहुत हैं, उपलब्धियां हैं, लेकिन वो साइंस की कोई डिग्री नहीं रखते। इनफैक्ट बचपन में उनका शौक था रॉकेट उड़ाने का और वो किसी तरह से मेहनत जुटा करके नासा तक पहुंचे तो नासा वालों ने कहा एजुकेशन के नाम पर तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक डिग्री नहीं है, ही इज ए नॉन साइंस पर्सन, भगा दिया। लेकिन एलन मस्क ने घर पर ही किताबें पढ़ करके भाई साइंस की तालीम जुटानी शुरू की। सफलता भाग्य से नहीं मेहनत से मिलती है, ये साबित कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि 2026 के मध्य तक, यानी इस समय तक, एलन मुद्रा की जो संपत्ति है वो ट्रिलियंस में है। ही इज द फर्स्ट ट्रिलियनेयर। हमने लखपति, करोड़पति, अरबपति तो सुने हैं, लेकिन ही इज खरबपति। लेकिन ये भी बता दें कि भाई ज्यादातर संपत्ति नकद नहीं है बल्कि कंपनियों में हिस्सेदारी के रूप में है। टेस्ला है उनकी, स्पेस एक्स है, एक्स एआई, एक्स, और इन कंपनियों के शेयर के भाई मूल्यांकन में बदलाव आता जाता रहता है, लेकिन ही स्टिल द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट और न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसे कई फील्ड्स में एक्टिव हैं। अब बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और क्या आप विश्वास करेंगे 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्लास्टर नामक कंप्यूटर गेम बनाकर बेच दिया था। बाद में वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। और साहब आपको बता दें कि अध्ययन जो है उन्होंने घर पे किया विज्ञान का, किताबें पढ़ पढ़ के, प्रयोग कर करके, छोटे मोटे जोड़ तोड़ बिठा करके वो साइंस के क्षेत्र में इस तरह से उपलब्धियां लेते रहे, अचीवमेंट्स जुटाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई सिस्टमैटिक डिग्री नहीं ली किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से। कहा ना, विद्या तो कदम कदम पर बिखरी पड़ी है। बस आंखें कान बुद्धि का जो द्वार है वो खुला रहना चाहिए, ज्ञान जुटाओ और फिर उसे फैलाओ। एलन मस्क का ये सपना है कि वो जन जन तक, कण कण तक ये उपलब्धियां पहुंचाएं और एक दिन वो अपना स्पेसयान मंगल ग्रह और चांद तक पहुंचाएं और फिर लोगों को उसमें भाई वो आने जाने की सुविधा दे सके। देखते हैं साहब, विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ज्ञान केवल स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं मिलता है, आपके घर पर भी, आपके आस पड़ोस में भी, आपके परिवार में भी। आज का गीत जो चिंतन के साथ हम सुनवा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम करना चाह रहे हैं जिसे कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ रह गया। मैंने अपने परिवार को बहुत सारा दिया, भाइयों को पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाया, पर मैं खुद स्कूल कॉलेज नहीं जा सका। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप पढ़े हुए नहीं हैं, कढ़े हुए हैं, अनुभवी हैं, आपके पास जितना ज्ञान है, आपके पास जितनी बुद्धिमत्ता है,
वो तो आपके परिवार में किसी के पास नहीं है, आपको जिम्मेदारियों का एहसास है और यही सबसे बड़ा ज्ञान तो आपके पास है। ईश्वर ने भी तो कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था, बचपन से ही ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखा करके उन्होंने साबित किया कि ज्ञान आपके भीतर है।

विद्या का अभिमान नहीं है, नॉलेज का अभिमान नहीं है, पर यह मत समझिए कि आपको ज्ञान नहीं है। ईश्वर ने हर मस्तिष्क में ज्ञान भर के भेजा है, बस उसे बाहर आने दीजिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें नीलम जी ने भिजवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, और बहुत सारी शुभकामनाएं वर्मा परिवार को, जिनके भाई बहुत सारे चिंतन प्रेमियों से भेंट हुई। चिंतन के साथ जो गीत आपने सुना, दैट वाज पिक्चराइज्ड ऑन नूतन, एक तुम दूजे भगवान, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म मेहरबान। सुनील दत्त और नूतन की फिल्म थी, और उसमें शायद सुनील दत्त को भी यही कॉम्प्लेक्स था कि वो अनपढ़ रह गए, लेकिन जो कारनामे उन्होंने फिल्म में दिखाए भाई, उससे साबित होता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज अटेंड नहीं की, लेकिन सूझबूझ में, नॉलेज में, निर्णय लेने में, उनके ज्ञान का भाई कोई क्या कहें आपको, मुकाबला नहीं। याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल होता है। भाई ये जो गूंज मेरे कानों में आ रही है, आप तक भी पहुंचती होगी, मैं क्षमा चाहता हूं, और मुझे बहुत जल्दी ये हेडफोन्स बदलने होंगे, क्योंकि मैं पूरी तरह से इनको कोशिश कर रहा हूं कि इनकी गूंज ना पहुंचे, और पहुंचते तो क्षमा कीजिएगा। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: मधुर आवाज सुनवाते हैं आपको मोहम्मद अजीज के साथ, सुनिए एस जानकी को। एस जानकी भाई, ये एक ऐसी आवाज जो खामोश हो गई है, लेकिन साहब गायक कलाकारों की आवाज कभी खामोश नहीं होती, बरसों तक युगों तक गूंजती है संगीत प्रेमियों के दिलों में।
1: जाते जाते जाते मुझे तू रुला गई,
0: जाते जाते रुला गई बहुत सारी भाई आंखों को। एस जानकी, वीकेंड पर उनका निधन हो गया।

23 अप्रैल 1938 में उनका जन्म हुआ मैड्रास में। उस समय मैड्रास कहते थे तमिलनाडु को, चेन्नई को। अभी तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई, ये जो उनका जन्म स्थल है पल्ला पाठिया, उस समय मद्रास में था यानी तमिलनाडु में। और शनिवार 11 जुलाई को उनका निधन हो गया 88 बरस की आयु में, मैसूर में, कर्नाटक में। सरस्वती पुत्री एस जानकी इज नो मोर पर वॉइस इज देयर। गीत है, संगीत है, अमर है, स्वर ईश्वर है।

0: ये गीत वही श्रद्धांजलि स्वरूप एस जानकी महान गायिका को समर्पित। वीकेंड पर उनका निधन हो गया, लेकिन संगीत प्रेमी उन्हें अपने दिलों में याद रखेंगे और याद रखेंगे उन गीतों को।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: और याद दिला दें आपको लाइक एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड आ गया है, ईस्ट अफ्रीकन एशियंस, वो लोग भाई जिनके संघर्ष की कहानी एक प्रेरणा बन सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अपनी जड़ों से उखड़े और उसके बाद भी जड़ों से जुड़े रहे और जहां गए अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को साथ लेकर के भाई एक देश से दूसरे देश और वहां से भी फिर कोई यूरोप तो कोई वापस भारत लौटे, उनके संघर्ष की गाथा को भाई ये हमारा एपिसोड प्रदर्शित करता है। और उपलब्ध है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जरूर देखिएगा ईस्ट अफ्रीकन एशियंस।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है
1: लाइका रेडियो।
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
1: Radio partner, Leica Radio.
10: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
12: It was just another day. A familiar drive, through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner.
13: think.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.

0: Updates are sponsored on the Leica Radio Network. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: पैसे भिजवाना चाहते हो तो लैम्फाई के रेट हम बताते हैं, नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.09 रुपीस, पाकिस्तानी 373.41, श्रीलंकन रुपए 450.35, बांग्लादेशी टके 165.45 एंड अफगानी 86.52.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Well, the gold is trading at the rate of 97.36 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Aapke saamne ek red button hai. नहीं दबाना.
6: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4.
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
6: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार.
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
6: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ.
9: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता.
10: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
11: City Bond Travel.

0: कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
1: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
0: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेस
1: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल ऑन 01162 167225। वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड।

जी तो हम भी नहीं सके, पर उन्हें कोई कैसे बताए कि तमन्नाएं सब नेक उसी के लिए हैं, मेरी सारी खुशियां वफाएं उसी के लिए हैं, वो अजबर उसे रास्ते आने वाले मगर उसको जाने का रास्ता भुला दे।

महेंद्र कपूर की सदाबहार आवाज हमें ले आई है 12 बजे की खबरों तक। खबरें सुनेंगे आप और भाई, खबरों में वार्निंग दी जा रही है हीट वेव, ये क्लाइमेट चेंज का असर जो है बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। कहते हैं कि हीट वेव के कारण जन्मी बीमारियों से इंग्लैंड और वेल्स में 2700 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो हीट वेव के कारण बीमारियां पैदा होती हैं।

0: चल चल चल निकल निकल निकल चल मेरे भाई, तेरे पांव तोड़ता हूँ, तेरा सर फोड़ता हूँ, तेरा भाई जो लड़ाई झगड़ा करना करो, लेकिन बेचारी बोतल का क्या कसूर है? बोतल क्यों तोड़ते हो भाई? ला दे ये बोतल, अभी तोड़ता हूँ, अभी फोड़ता हूँ। देखो भाई बात ये, नुकसान क्यों करना ये बताओ, आपने नहीं पीनी है, इधर पहुंचा दो ये भाई। ए, ए, क्या क्या के बोतल बोतल बेकसूर है। लीजिए साहब, नशीले गीत सुनवाते हुए प्रोग्राम के तीसरे दौर का आगाज हो चुका है और अब एक बार फिर सुन लीजिए SBI का इस समय का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK इस समय जो रेट दे रहे हैं, नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.75 रुपीज एंड दैट इज द मैक्सिमम। एंड हाउ यू कैन बाई सेंड टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स इन इंडिया, यू कैन गो टू द ब्रांच और ऑनलाइन यू कैन डू इट, और या फिर उनका जो SBI योनो मोबाइल ऐप है उसके इस्तेमाल से यू कैन सेंड मनी टू इंडिया। एंड डोंट फॉरगेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। ये है लाइका रेडियो।
2: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: बहुत सारे आशीर्वाद लेता था, लेकिन 2012 में जब उन्हें फोन किया तो छाया बहन जी से बात हुई। छाया उनकी बेटी का नाम है और एक वीना है उनकी बेटी और एक बेटा है अजय, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे अजय के बारे में, क्योंकि उन्होंने वर्षा उसगांवकर से जो फिल्म अभिनेत्री एक्ट्रेस हैं उनसे शादी की है और वो भी वचन में ही रहते हैं घर में उसमें। तो छाया ने कहा कि पापा घर पे नहीं है भैया, वो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हुआ? कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है कहती हैं वो। तो मैंने कहा नहीं है, मैं फिर करूँगा। तो 3 मार्च को किया था, उसके बाद फिर मैंने 7 मार्च को किया फोन, तो वो सुबह उठते हुए उन्होंने बताया कि पापा तो चले गए। संगीतकार रवि इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी धुनें छोड़कर, और भाई संगीत का एक यूं कहिए कि एक ऐसे मोड़ पर वो संगीत प्रेमियों को जैसे प्यासा एक जिज्ञासा भरे भाई माहौल में छोड़ गए हैं कि वो हम मिस करते हैं उन्हें। तो बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह में म्यूजिक डायरेक्टर रवि की बनाई धुनों पर। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और अब अगला गीत, बढ़ते हैं आगे।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और साहब पता चला है कि आज मास्टर सलीम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मास्टर सलीम भाई पंजाब की एक ऐसी आवाज है जो बहुत दूर दूर तक अपने रंग बिखरा रही है। सलाम सलाम सलीम साहब, सलाम।

0: और बहना भाई आपने महसूस किया होगा क्या कंट्रोल है सलीम का अपनी आवाज पर, जिस तरह से वो भाई मुर्गियां लेते हैं ना गीत में छा जाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इस भाई पंजाबी गायक कलाकार को हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। वैसे इन्होंने हिंदी के गीत भी गाए हैं, बहुत सारे गीत इनके छाए हैं। तो साहब आज जन्मदिन के मौके पर ये गीत किसने पहुंचाया आप तक?
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहनों भाइयों अब इंतजार हमें कोई खेलों की खबर कोई आने वाली है, इंतजार कर रहा हूं मैं, बस आने ही वाली है। बात यह है कि क्रिकेट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड की महिलाओं के बीच। पुरुषों की टीम तो भाई बहुत बढ़िया नहीं खेल पाई इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि खिलाड़ी काफी उसमें नए थे, लेकिन वुमेन टीम जो है अच्छा रंग दिखा रही है। और टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में इकलौता टेस्ट मैच भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया है। एक तो भाई यस्तिका भाटिया का जो शतक, उनकी जो सेंचुरी है वो चर्चा में है, पहली सेंचुरी किसी विमेन खिलाड़ी के द्वारा। भाई पहला टेस्ट मैच दोनों का लॉर्ड्स के मैदान में, जो कि क्रिकेट का घर माना जाता है, क्रिकेट का तीर्थ स्थान माना जाता है, भाई वहां पर ये मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, इकलौता टेस्ट मैच इंडियन विमेन ने 270 रनों से जीत लिया है। देखिए स्कोर बनाया, पहली इनिंग में 285 रन और दूसरी इनिंग में 341 रन 7 विकेट पर बना करके पारी डिक्लेयर कर दी। और इंग्लैंड की महिलाओं ने पहली इनिंग में 170 रन बनाए और दूसरी में 186 रन पर पूरी टीम अभी अभी आउट हो गई है। और भाई बधाई देते हैं हम भारतीय महिलाओं को, इसी तरह से रंग दिखाती रहें, छाती रहें। आपको बताएं कि वो जो जय शाह है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष, अपना आईसीआईसीआई के भी वो जो क्या कहते हैं उसको, जो क्रिकेट काउंसिल है इंटरनेशनल आईसीसी, तो भाई वो जो है उसके भी अध्यक्ष जो है जय शाह हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि वो महिला क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और एक काम तो उन्होंने ये किया कि पुरुषों को जो करोड़ों में फीस दी जाती थी, महिलाओं को कम पे किया जाता था धन जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं और पुरुषों को बराबर पैसे मिलेंगे। तो भाई करोड़ों की बारिश होने लगी और भारतीय टीम की महिलाओं ने भी फिर हाथ दिखाने शुरू किए। और अब भाई पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो बहुत बहुत भाई बधाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
1: Like a radio.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: ये नशे की बात नहीं करना, नहीं नहीं, दारू की क्या तो बिल्कुल बात करना ही, छेड़ना ही नहीं, बात चर्चा नहीं करना। ए, हाँ दमशम लालो विषय कोई गल नहीं, पर ज्यादा नहीं, ए ज्यादा नहीं यार।

आशा जी दम लगाओ भी तो कह सकती थी, या दम मारो, ये मारपीट जरूरी है क्या? तो पंजाबी च ना ये नहीं कहते भी ताड़ियां बजाओ, वो कहते भाई ताड़ियां मारो, हर थाने भाई मारपीट कानू है।

अर्जुन जी आपकी मुबारकबाद भिजवा देते हैं इंडियन टीम को, थैंक यू। और भाई प्रदीप सोलंकी, थैंक यू वेरी मच। बीकू भाई ये गीत आपके नाम कर देते हैं, आप केनिया में सुनते हैं हमारे प्रोग्राम, कहते हैं आजकल नहीं सुन पा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ आपके कार्यक्रम को, कोई कारण है, आई एम मिसिंग।

0: आजकल रूठो को मनाएंगे भाई, कब तक रूठे रहेंगे। अंसा बोरा जी थैंक यू वेरी मच, आनंद तोमर, विजय मॉरिशस वाले और भाई अहिर यादव जी आपका भी धन्यवाद, नीला चौधरी जी, सत्यनारायण सैनी भारत में सुन रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ लगातार, जगदीश रानी स्लो वाली, रंजन वत्सला जी धन्यवाद, सुनीता शर्मा, रागिनी पम्मी स्लो वाले, मान जाएंगे।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको बता दें भाई, लेम्फाई के रेट से एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.17 रुपीस, पाकिस्तानी 372.51, श्रीलंकन रुपए 450.21, बांग्लादेशी टकास 165.2 और अफगानी 86.4.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 97.62 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Like a radio.
4: Salaam, main to saab ban gaya.
0: Hey, gali nahi.
4: Are, salaam, main to saab ban gaya.
0: Gali kahe ko deta, bhai.
4: कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो
0: देखा
4: बोरा कोई लंदन का।

कर कैसा तू दे ठांडे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे ठांडे कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

0: साला मैं तो साहब बन गया भाई। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो गाली दे रहा है, देखो रेडियो पे यार क्या सुनवा रहे हो हमें। भाई साला कोई गाली नहीं है, साला है साली नहीं है, और साली भी गाली नहीं है क्योंकि ये तो एक रिश्ता है। और कई लोग तो भाई ये साला शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बात बात में, सेंटेंस में, हर सेंटेंस में साला घुस जाता है। भाई साला पत्नी का भाई रिश्ता है एक, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है, एक भाई बात बता रहे थे, अगर यार की जैसा मैं जा रहा सी ते मैं सारा कल्ला मेरा दिल ना लगे ते अते रस्ते च मेरा एक सारा फ्रेंड मिल गया। अब असी दोवे डिसाइड किया कि असी सारे निकल पे, वो भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करे तो वो साड़ी स्टार्ट ना हो। तो बाद भाई एक बंदा जा रहा सी, मैं उन्हें क्या भाई वो साड़िया थोड़ा धक्का ला दे भाई, तो उस बंदे ने भाई वो साड़ा धक्का लाने पर लपया और भाई फिर मोटरसाइकिल साड़ी स्टार्ट हो गई भाई। फिर तो रुके ना भाई, भजी जावे सामने तो साड़ा एक ट्रक आ रहा सी भाई, साड़े ड्राइवर ने वेख्या नहीं। तो बाद भाई मेरी मोटरसाइकिल वो साड़े ने धक्का मारा, मोटरसाइकिल साड़ी वो जाके डिगी खड्डे च जा पाई भाई। फिर एक कोई साला गड्डी वाला आ रहा सीगा, सानू दोयां नू चक के भाई वो हॉस्पिटल ले गया, उत्थे साला डॉक्टर नहीं सीगा। ओ यार उस दिन तो वो सारा दिन बड़ा खराब सीगा, दसो पता कितने बार हर बात में वो इस्तेमाल करते साला, ये तो साहेब बन गया। याद रखिए सारा एक रिश्तेदारी है, एक रिश्ता है, गाली नहीं है।
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-028-0655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
7: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
8: Create terror.
5: वेखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
9: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, all protected.

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323. You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
2: Listen back to your favourite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
3: एंड दैट्स इट भाई, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम। बाली भाई स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं और शर्मा जी अपना बोरिया बिस्तर बंधवा चुके हैं। हमारे आपकी अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद, एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अब इजाजत दीजिए।

0: I know, I know, I know. You loved both the songs and you were singing along with them. Yes, these songs were actually written by Prakash Mehra. But the man was so talented. He also produced and directed films. He was, aapko main jab bhi bolta hun Nasir Hussain ya main kahunga Manmohan Desai, to aap immediately bolenge, yes, the pioneers of masala films, jaise Nasir Hussain ki Yaadon Ki Baraat, aur dusri film mein, of course, the romantic film, Kayamat Se Kayamat Tak, and Manmohan Desai ki baat karu main, तो अमर अकबर एंथनी नसीब कूली जैसी फिल्में पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स वैसे ही प्रकाश मेहरा वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स अब मैं जो फिल्में बताऊंगा तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि यस दोज वर द मसाला फिल्म्स उन्होंने 27 फिल्में की थी 27 फिल्मों में अलग अलग तरीके से की थी उन्होंने प्रोड्यूस की थी 17 फिल्में out of the 27 and he directed 22 films out of the 27 films he was an assistant director for one film and a production controller in one film ab aaj unki 87th birth anniversary hai and ek film mein he just contributed to the script because he entered the industry as a production controller and a lyric writer. The story begins with the late 1950s. Tab Prakash Mehra being a production controller in the film Professor, yaad hai na Shammi Kapoor ji jisme the, 1962 ki film. The producer was F.C. Mehra and the director was Lake Tandon. And production controller Prakash Mehra. Wahan se shuruaat ki inhone. And 1965 mein, he actually was the assistant director in a film called Purnima. Yes, in 1968, at the age of 29, ab 30 saal ke bhi nahi hue the, in 1968, he directed Shashi Kapoor in Haseena Maan Jayegi. Usme se teen gaane bhi likhe the inhune, in which Shashi Kapoor actually played a double role. Now imagine a debut film for direction जिसमें शशि कपूर डबल रोल कर रहे हैं एंड फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए तो नेचुरली इनको और फिल्में भी मिलेगी 1973 में प्रकाश मेहरा जी वाज 34 इयर्स ओल्ड एंड ही फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो इन्होंने की ही थी जो हसीना मान जाएगी इसमें भी डायरेक्शन उन्होंने की लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रोड्यूस भी की एंड दैट वॉज द फिल्म which launched Amitabh Bachchan's career. Film thi Zanjeer, 1973 ki. The hit with Amitabh Bachchan, which started a long-term collaboration, successful collaboration, bolun to theek rahega, of 7 more films. Matlab kul mila ke 8 filmen Amitabh Bachchan ji ke saath ki thi. Zanjeer ke baad, inki dosti badh gayi, and उन्होंने 7 फिल्में और की जिसमें से 6 तो ब्लॉकबस्टर्स थी और एक इतनी अच्छी नहीं चली 1976 में इन्होंने हेरा फेरी 73 में जब जंजीर की उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ 76 में हेरा फेरी फिर खून पसीना एंड ही खून पसीना इन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी लेकिन सिर्फ प्रोड्यूस की थी And then Muqaddar Ka Sikandar, 1978, jisme unhone gaana jo likha, arre my God, Salame Ishq Meri Jaan, oh wow, wow, wow. I can't play that song because it's already been played over the weekend. And then Lawaris, 1981 mein, Amitabh Bachchan again, Namak Halal, 1982 ki, and Sharabi, all hits, except the 7th film, which was Jadugar. I wouldn't call it a flop, but it ended the successful streak of jo Prakash Mehra aur Amitabh Bachchan ki jo thi successful streak. In 1991, he produced and directed Zindagi Ek Jua with Anil Kapoor and Madhuri Dixit, but it wasn't a commercial hit. Music, aaj bhi hit hai. Mere favorite gaane hai sab. And unki umr thi 52 saal ki. Ab aapne suna na, 29 साल का एक नौजवान जिन्होंने शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, वो अब 52 साल के हो गए, एंड ही वाज प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग, एंड 1996 में जब उनकी उम्र थी 57 साल की, ही इंट्रोड्यूस राजकुमार सन पुरु राजकुमार इन बाल ब्रह्मचारी 1996 में विद करिश्मा कपूर एंड दीपक तिजोरी. इट वाज एन अनसक्सेसफुल फिल्म. अब फिल्में जब फ्लॉप होने चलती है तो आदमी डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में कभी कभी शराब पी लेता है. दिस वॉज हिज डाउनफॉल. इन 1993 बिफोर द राजकुमार सन्स पुरु राजकुमार की फिल्म बाल ब्रह्मचारी इन्होंने डायरेक्ट की थी, पार्थो घोष ने डायरेक्ट की थी फिल्म, और इन्होंने प्रोड्यूस की थी अ बाइलिंगुअल फिल्म कॉल्ड दलाल विद मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का एंड राज बब्बर. इट वॉज द 8th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1993. उसके बाद फ्लॉप्स होने लगी. नाउ हिज चॉइस ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स दूसरे भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स वर कल्याण जी आनंद जी. फ्रॉम 1968 हसीना मान जाएगी, जंजीर, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, जादूगर, ये सब फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी. फिर बप्पी लहरी जी के क्या साथ निभाया इन्होंने, नमक हलाल, शराबी, जिंदगी एक जुआ, बाल ब्रह्मचारी एंड दलाल. अदर फिल्म्स, चमेली की शादी जिसमें उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखाई थी, एंड देन मुझे मेरी बीवी से बचाओ 2001 की, ही प्रोड्यूस दैट फिल्म, वन ऑफ द लास्ट वंस ही डिड. एंड प्रकाश मेहरा वाज वन ऑफ द फर्स्ट बॉलीवुड डायरेक्टर टू ट्राई एंड वेंचर इनटू हॉलीवुड, अ जॉइंट वेंचर इन द लेट 80s. उन्होंने गॉड कनेक्शन नाम की एक फिल्म में चार्ल्स ब्रॉन्सन को रखा हुआ था, लेकिन एंड मैनी अदर आर्टिस्ट. But it was, though a heavily funded project, it never came to light, really speaking. His death was 17th May 2009 in Mumbai due to pneumonia and multiple organ failure. We are remembering producer, director, lyricist, one of the pioneers of masala films, Prakash Mehra. It's his 87th birth anniversary.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you the latest rate now being 127.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Mister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU and 2A Rollout Hill, Lister, LE5 4UN.

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी
1: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
2: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट Melton Road, LE4-5EA.
2: Pooja Sweets and Savories.
4: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: We are listening to songs that were written by none other than Prakash Mehra. Prakash Mehra, producer and director. Ye film thi Ek Kunwara, Ek Kunwari, Ek Kunwara. It is the 87th birthday.
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like I was saying, it was a song that was written by Prakash Mehra ji. Inhone itni produce ki, direct ki filme, lekin lyrics mein bhi wo kam nahi the. उन्होंने एक कुंवारी एक कुंवारा 1973 की फिल्म जो थी उसमें इन्होंने ये गाना लिखा एंड कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज हसीना मान जाएगी जहां कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूजिक है और रफ़ी साहब ने गाया हसीना मान जाएगी एंड हसीना मान जाएगी में ही एक्चुअली डायरेक्टेड हिज फर्स्ट फिल्म विद शशि कपूर इन अ डबल रोल 1968, जब उनकी उम्र थी सिर्फ 29 साल की.
1: It's summer on the Leica Radio Network.

0: तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी।
1: हसीना मान जाएगी, एंड दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाई प्रकाश मेहरा, यस, एंड हिज फर्स्ट डायरेक्शन।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3396. Indian rupees 128.15, Pakistani rupees 372.54, Afghan Afghanis 86.39 and Kenyan shillings 173.07.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £97.59 per gram.
2: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
5: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
7: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार Bollywood night के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
8: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
11: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
10: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
11: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
10: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल ऑन 0116216725। वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family.
13: Radio partner Leica Radio.
14: आपके सामने एक रेड बटन है।
15: आ,
13: दबा दिया?
14: नहीं दबाना था.
15: The madness is back. धमाल 4.
16: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
15: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
17: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
15: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
18: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता.
19: Lemfi means quicker and safe way to send money.
20: Lemfi means low transaction fees and great exchange rates.
19: Lemfi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
20: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with Lemfi. Download the LEMFI mobile app today.
15: Lemfi is registered by the FCA. T's and C's apply.
2: This is LIKA Radio across the Midlands.

0: फिल्म शराबी का गाना, जो प्रोड्यूस और डायरेक्ट की फिल्म और गाना भी लिखा, दूसरे गाने भी लिखे थे इन्होंने, ये सुनिए।
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Film Dalal.
2: Behue paani mein kankar nama saavri.
0: Written by Prakash Mehra.
2: Chal

0: I know. You're enjoying these two songs that I played here. But the man behind it all, आज क्या होता है कभी हम थोड़ा सा यू कैन से ध्यान देते हैं म्यूजिक पे, कभी हम लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, कभी हम सिंगर पे ध्यान देते हैं. सो आज जो ट्रिब्यूट है उसमें आपको गौर करना है दी म्यूजिक पीसेस दैट हैव बीन प्लेड. म्यूजिक पीसेस प्लेड बाय मनोरिदा. मनोरिदा यानी के मनोहरी सिंह. And he was born in Kolkata on March the 8th, 1931. And he passed away at the age of 79 on 13th of July, 2010. Ji haan, ab kafi 16 saal ho gaye hain. Aur main 13 July 2010 ko, I was in Mumbai. Aur main funeral mein bhi gaya tha. और जहाँ से बॉडी ले जा गई थी इन जुहू वेर ही लिव्ड, वहाँ से वो लोग क्रेमेटोरियम पे जब ले गए थे बॉडी, तब हम इकट्ठा हुए थे. आई हैव नेवर एवर सीन सो मैनी म्यूजिशंस एंड सिंगर्स गेटिंग टुगेदर इन वन प्लेस. मैं सच्ची चकरा गया था जब मैंने देखा कि कितने लोग मनोरिदा के लिए आए थे. अ मैन हु used to, I mean, no musician could be compared with Manorida. इन्होंने saxophone बजाया तो अलग तरीके से, alto saxophone, soprano saxophone, tenor saxophone, फिर इन्होंने trumpet बजाई, इन्होंने flute भी बजाई, इन्होंने piccolo भी बजाया, इन्होंने clarinet भी बजाया, mandolin भी बजाया. The next song I'm gonna play is जहाँ पे इन्होंने mandolin बजाया था एक गाने के अंदर. And pan flute, harmonium, bansuri, recorder, ये सब instruments में वो माहिर थे. इनकी शुरुआत कैसे हुई? 11 साल का लड़का 1931 में जन्मा हुआ and his father and uncle used to play in brass bands. तो वो हमेशा जाता था और ये brass bands में jazz music और ये सब सुनने के बाद और उनके साथ play करने के बाद he became so versatile. जी हाँ, इसलिए उनका जो प्लेइंग था वो स्पेशल था. इन्होंने एक बाटा शू कंपनी में, एक जो बाटा नगर इन कोलकाता था, अंडर इट्स हंगेरियन कंडक्टर, एक ब्रास बैंड था, उनका एक हंगेरियन कंडक्टर था जोसेफ न्यूमैन. वो हमेशा हर एक इंटरव्यू में जोसेफ न्यूमैन का नाम हमेशा लेते थे, क्योंकि इनकी बदौलत वो बने जो बने. When Newman left in 1945 में जब वो चले गए his master's voice में, तो मनोरिदा ने follow किया उनको कि मैं आपके साथ ही जुड़ के रहूँगा. And then from classical music he started playing Hindi and Bengali songs his master's voice orchestra के लिए. And then Newman was arranging all composers के लिए, you know, S.D. Burman के लिए, उनके लिए वो arrangements करते थे. And Tim Baran and Ravi Shankar वगैरह. And he also played flute and piccolo at the Calcutta Symphony Orchestra. मैं बात कर रहा हूँ हमारे मनोरिदा की. वो flute और piccolo भी बजाना सीख लिया इन्होंने Calcutta Symphony Orchestra में. फिर इन लोगों ने उनको रखा English key flute बजाने के लिए Calcutta Night Club में. और कैलकटा नाइट क्लब जो थी एक रेस्टोरेंट थी वहाँ पे, फिरपोज रेस्टोरेंट, जहाँ पे जॉर्ज बैंक्स ट्रम्पेट प्लेयर ग्रैंड होटल में वो लोग बजाते थे. तो मनोरिदा को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कोलकाता नाइट क्लब सीन में. एंड सो ही गॉट द क्रेज. ये नाइट क्लब सीन था तो इन्होंने बोला कि मैं सैक्सोफोन सीखूंगा अभी, और वहाँ से इनकी करियर शुरू हुई. Joseph Newman, he left his master's voice to settle in Australia. तो बड़ा दुखी हो गए, कहने लगे अब तो क्या करें, वो तो चले गए. तो मनोरिदा moved on to play at Firpo's, वो जो नाइट क्लब सीन जो था. वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी मिले उनको, और मनोरिदा ने उनकी बात सुन ली, कहा कि तुम मुंबई जाके अपना लक ट्राई करो. एंड ही डिड दैट. He moved there in 1958. यस मनोरिदा ने कदम रखा बॉम्बे नगरी में जो आज मुंबई है. एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू द फिल्म इंडस्ट्री. 1958 में सचिन देव बर्मन के साथ वो एज अ सैक्सोफोनिस्ट उन्होंने एक मूवी थी सितारों से आगे उसमें उन्होंने बजाया और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी साथ दिया एंड प्ले फॉर मैनी अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स एज वेल. और जब एक दो गाने निकल आए तब इंडस्ट्री ने बोला कि कोई आया है यहाँ. कुछ नोटेबल गाने तो आपने अभी सुने, गाता रहे मेरा दिल, उसके अंदर क्या इन्होंने सैक्सोफोन बजाया. और दूसरा यही वो जगह है ये रात फिर ना आएगी. अब मैं बातें जितनी करूँगा उतने गाने कम होते जाएंगे, सो मैं बातें यहाँ ख़त्म करता हूँ और हम सुनते हैं इन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से गाने में बजाया. एक फिल्म थी प्यार का मौसम, उसमें एक गाना था तुम बिन जाऊं कहां, उसमें आप सुनना इन्होंने जो मैंडोलिन बजाया था. यस बड़ा मजा आएगा, सुनते रहिएगा. मैं हूं बाली ब्रह्मभट और लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स बॉलीवुड की कहानियां सुनाता हूं, जिनसे मैं मिल चुका हूं उनके बारे में भी मैं बताता हूं. ही लव्ड मी एंड वी यूज टू बी टूगेदर, क्योंकि उनको उनके बेटे को मेरे पास भेजा था एल्बम के अरेंजमेंट्स के लिए एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स आउट ऑफ दैट. मनोरी दा ने मेरा एक जैज एल्बम था उसके अंदर एक जैज वाला गाना था उसके अंदर, वो मैंने बुक किया था सारे म्यूजिशियनों को, मैंने नहीं बुक किया था एक अरेंजर ने बुक किया था. तो जब वो स्टूडियो के अंदर सब म्यूजिशियंस बजा रहे थे एंड दे वर प्लेइंग वायलिन्स एंड सैक्सोफोन एंड सब म्यूजिक बज रहा था, तभी ये रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आया और कहने लगा, आपको पता है इन म्यूजिशियनों में एक बंदा जो बैठा है ये सबका बाप है, वो आज एक म्यूजिशियन के तौर पे आए हैं. मैं बोला कौन है, बोले वो बैठे हैं ना जो नेपाली लुक वाले, वो मनोरिदा है. उन्होंने कहा कि आर डी बर्मन के साथ ये सब फिल्मों में इन्होंने बजाया, इन्होंने गाने गाए और एक गाने में तो विसल भी उन्होंने बजाई है, ये शाम मस्तानी उसमें विसलिंग जो की है वो भी, और गाइड फिल्म, ये सब मुझे बताया तो मैं पागल हो गया. और उनको जाके मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा आप एक म्यूजिशियन की तरह क्यों आए, यू शुड बी द अरेंजर हियर. बोले जो काम मिलता है मैं करता रहता हूँ, इस उम्र में ये सब नहीं देखना चाहिए, हमको रोजी रोटी कमानी है, हमको घर चलाना है. एंड आई फेल इन लव विद दैट मैन, देन आई रेगुलरली केप्ट ऑन मीटिंग हिम एंड दैट्स व्हाई आई हैड गॉन टू हिज फ्यूनरल एज वेल. Manorida.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Well, FIFA is into semi-finals now because Spain beat Belgium, England beat Norway, Argentina beat Switzerland, and tomorrow is going to be France versus Spain in Dallas. And on Wednesday, it's going to be 15th of July, 8 p.m., England versus Argentina in Atlanta. Yes! Abhi sunte rahiyega. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: Aapke saamne ek red button hai. नहीं दबाना था.
7: The madness is back. Dhamal 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
7: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
10: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: दिन।
1: ये गाने में जो मैंडोलिन इन्होंने जो बजाया था जिस अदा से, पूरे गाने को हिट कर दिया इन्होंने। और आगे मैं बताता हूँ आपको कौन से गाने इन्होंने अरेंज किए थे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। मनोरिदा, मनोहरी सिंह।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Next gana jo aapko main sunaunga usme inhone flute bhi bajayi thi aur saxophone bhi bajaya tha. And then uske baad ek dusra gana hai जो फिल्म दुल्हन एक रात की का गाना है जिसमें इन्होंने फ्लूट बजाई थी। सो गाने इन्होंने इंस्ट्रूमेंट तो बजाए थे लेकिन साथ साथ में इन्होंने अरेंजमेंट्स भी की थी कितने गानों की। जैसे एक गाना है, सुनो कहो कहा सुना कुछ हुआ क्या आपकी कसम का, वो अरेंजमेंट इन्होंने की थी। फिर ये गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो किशोर दा का भी वर्जन और रफ़ी साहब का भी वर्जन इन्होंने अरेंजमेंट की थी पूरे गाने की। एंड देन आने वाला पल, फिल्म गोलमाल का गाना 1979 का, वो इन्होंने अरेंज किया था। एंड देन कस्मे वादे 1978

0: थैंक्स टू मनोरिदा फॉर अरेंजिंग इट एंड देन करवटे बदलते रहे आपकी कसम करवटे बदलते रहे कितना खूबसूरत गाना एंड देन मेरे जीवन साथी का ओ मेरे दिल के चैन वो भी गाना इन्होंने अरेंज किया था देन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो गाना जो था आपकी कसम का 1974 एंड दैट इज ऑल्सो अरेंज बाय हिम एंड देन अमर प्रेम का दूसरा गाना ये क्या हुआ है ना. All these songs were arranged by Manorida. आगे जाते हुए और भी मजा करेंगे. सुनते रहिए.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester.

0: जारे ये गली है सुवन की।
1: जब लता जी गा रही हैं उसके पीछे भी जो बैकग्राउंड में सैक्सोफोन इन्होंने बजाया, फ्लूट भी गाने में इन्होंने बजाई थी, और जो पहला म्यूजिक पीस आपने सुना, वाह, फिल्म माया का 1961, वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन मनोरिदा। इन द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज संग बाय रफी साहब, दुल्हन एक रात की, उसमें आप सुनिएगा बहुत खूबसूरती से इन्होंने फ्लूट बजाई है।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
3: This is Leica Radio across the Midlands.

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे?
0: समझे।
1: अच्छा जी,
2: बीच बीच में जो फिलर्स थे मैंडोलिन के, वो सब मनोरिदा ने बजाए थे। नेक्स्ट गाना जिसमें इन्होंने सैक्सोफोन जो बजाया था, फिल्म आरजू का गाना, दैट मतलब के लेट्स पुट इट दिस वे, गूज़बम्प्स।

शकील बदायूनी का गाना लिखा हुआ और बीना राय को ट्रिब्यूट देते हुए ऑन हर 95th बर्थ एनिवर्सरी फिल्म घूंघट, संगीत रवि अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक 1960 की फिल्म। इसमें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया बीना राय को और वहां पे मेजर अपसेट था। दिस वॉज द आई थिंक इट वॉज फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा था, इट वॉज 8th फिल्म फेयर अवार्ड जो 50s में शुरू किया गया था 1960 में। 8th फिल्म फेयर अवार्ड में बीना राय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जब दिया गया तब देर वॉज अ मेजर अपसेट बिकॉज पीपल वॉन्टेड मधुबाला टू गेट द अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन मुगले आजम। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम दैट हैड अकर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर विद फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड आगा द comedian for the film, he had got a nomination for best supporting actor, so thought I'd share out this little snippet with you। And aage jaate hue ek bada acha samachar lekar aata hu main aapke samne, aur wo kaun sa hoga abhi pata chalega।

0: afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
1: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा।
4: Get ready for the ultimate test of courage. Season 15, hosted by action maestro Rohit Shetty.
5: Welcome to Durga Capital, Cape Town.
4: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush. Starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
6: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
7: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: India's most popular street food place, Bikaner, now opening in Gounce Hill, Ilford. So celebrate the grand opening this Wednesday from 4 p.m. with your favourite Laika radio presenters, where you can come along and taste their famous chole bature, raj kachori, mithaiya, chaats and so much more. Bikaner, Ilford, 513 to 519 Cranbrook Road, IG26HA. Of course, we all know Bikaner is a legendary taste since 1905.
1: Energize your evenings with the Radio Wally roller coaster.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back, धमाल 4।
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Leicester Miller is back.
11: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
10: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
11: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
10: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
11: Arts Council England.

0: Basmati Rice.
1: Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
5: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता
9: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
10: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
11: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Take my phone. Why do I need to take my...
12: Hey, boy!
13: Coast Guard, we're stuck.
14: Okay, help's on its way.
13: Hold on, mate.
10: Shoes, tide, phone.
13: Back before dark, love. Okay.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
16: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
17: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
16: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
17: दिल तो टूट पे किया.
16: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
18: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
16: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियां हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
9: It's summer on the Leica Radio Network.

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: in Dubai
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
6: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: In Dubai
7: You know how fans shout at football matches
8: Oh, wake up
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish Works in advertising too Because when you amplify your advertising using radio your campaign is 49% more likely to get noticed See radio differently at radiocentre.org
9: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Biker Radio.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Sappho Travel, auto protected.
3: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: Leica Radio.
0: Time for another Leica Love Classic.